0: Energy. It's hot.
1: दो तोले की मुंदरी ला दे, तीन तोले का कंगना, मुंह दिखाई दे दे, फिर तू ले जा अपने अंगना।

0: Mirchi, it's hot. Surin ke saath, only on Mirchi, it's hot.
1: The show starts in 5, 4, 3, 2.
2: कभी कभी इन चार्ट्स को एक सिंपल काउंटडाउन की तरह सुनना थोड़ा अनफेयर लगता है बिकॉज एवरी सॉन्ग ऑन दिस लिस्ट इज एक्चुअली अ टाइम मशीन. एक गाना आपको इस हफ्ते के बॉलीवुड में ले जाता है और अगला ही गाना बिना वार्निंग के 10 साल पीछे. कभी कोई पुरानी आवाज अचानक वापस आ जाती है, कभी एक नया सिंगर किसी पुराने एहसास को अपनी नई सांस दे देता है, और कभी एक ऐसा गाना जिसे हमने सोचा था कि हम भूल चुके हैं, पता चलता है वो तो बस दिल के किसी कोने में सो रहा था. शायद इसलिए बॉलीवुड को सिर्फ न्यू और ओल्ड में बांटना मुश्किल है. यहाँ पास्ट भी हर वीक नए सिरे से रिलीज होता है और फ्यूचर भी कभी किसी पुराने गाने की शक्ल में लौट आता है. और आज के मिर्ची टॉप 20 में वक्त थोड़ा ज्यादा ही उलझा हुआ है. कुछ आवाजें वापस आई हैं, कुछ पुराने रिश्ते वापस आए हैं, और कुछ गाने अपनी जगह से कई बड़े हो चुके हैं. तो चलिए देखते हैं इस हफ्ते बॉलीवुड हमें किस जमाने में लेके जा रहा है. इट्स मी सुरेन, दिस इज द मिर्ची टॉप 20 एंड वी आर स्टार्टिंग विद द गाना व्हिच इज ऑन नंबर 20, धुरंधर का आरी आरी.
0: नंबर 20.

0: सुपरस्टार होने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या है? ऑडियंस जब आपकी एक इमेज बना लेती है तो उस इमेज के कंफर्ट जोन से बाहर निकलना एक बहुत बड़ा रिस्क बन जाता है। अक्षय कुमार ने अपने 35 साल के करियर में ये रिस्क बार बार लिया है। पहले एक्शन हीरो, देन रोमांटिक लीड, फिर कॉमेडी स्टार, उसके बाद पेट्रियोटिक फेस। उन्होंने खुद एक बार बताया था कि करियर के एक दौर में जब वो हर फिल्म में सिर्फ डिशुम डिशुम कर रहे थे, तो एक वक्त ऐसा भी आया जब उन्हें एक अजीब सा डर लगा था।
1: एक दिन महसूस हुआ यार कि मैं सिर्फ एक बोरियत से आने लगी, और क्या मैं इसी के लिए बना हूँ कि सिर्फ एक्शन ही करना है मैंने, और कुछ नहीं करना, मैं और भी कुछ कर सकता हूँ। महसूस हुआ अपने अंदर ये घिन आने लगी यार कि मैं कुछ और भी तो कर सकता हूँ। बाकी सब एक्टरों को एक्टर बुलाते हैं, मुझे एक्शन का एक्शन बुलाते हैं, बस एक्शन का किंग कर लो, ये कर लो, इसको बुला लो, इसको स्टंट करवा लो, ये स्टंट मैन है। मैं यार करूंगा, आई थॉट इन माई माइंड आई हैव टू नाउ चेंज माई सेल्फ, आई हैव टू टेक अ रिस्क।
0: अक्षय ने अपने चेहरे में एक इमेज की जेल को देखा। आज हैवान में अक्षय कुमार एक डार्क सीरियल किलर के रूप में उस इमेज से एक बार फिर भाग रहे हैं। और इसी डार्क वर्ल्ड के बीच प्रीतम नाह ने एक बहुत ही मेलोडिक कॉन्ट्रास्ट दिया है शान और सुखविंदर सिंह की आवाज में। मूवी में सैफ अली खान पर पिक्चराइज्ड ये गाना एक पुराने दौर के सुकून को लौटा कर लाता है। नंबर 18 पर डेब्यूइंग दिस वीक, दिस इज रंगी आरा फ्रॉम हैवान।
2: नंबर 18।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट 98.3 it's hot Suren ke saath only on Mirchi it's hot
1: number 70

नंबर 17 पर है कहो तो फ्रॉम प्रेम कीटानु, अरमान मलिक की आवाज में। और अरमान को सुनते ही एक ईरा वापस आ जाता है जहन में, जब उनकी आवाज बॉलीवुड रोमांस की एक डिफॉल्ट सेटिंग हुआ करती थी। लेकिन आवाजों का सफर बहुत ही अजीब होता है। नंबर 16 पर है कॉकटेल 2 का माशूका, और कॉकटेल का नाम सुनते ही सीधा 2012 याद आ जाता है, जब इस फ्रेंचाइज ने एक बिल्कुल नए साउंड को इंट्रोड्यूस किया था। ये नेहा कक्कड़ की शुरुआत थी, और फिर 2015 से 2021 के बीच बॉलीवुड में एक ऐसा फेज आया जब नेहा की आवाज से बचना इम्पॉसिबल था। काला चश्मा, दिल पर, कर्मी, वेडिंग हो, पार्टी हो या क्लब एंथम, नेहा वाज एवरीवेयर। लेकिन इस कहानी का सबसे अनकंफर्टेबल सच पता है क्या है? बॉलीवुड ने नेहा कक्कड़ को कभी ऑफिशियली रिटायर नहीं किया। नेहा ने 2021 के बाद, गर्मी के बाद कई गाने गाए, लेकिन गर्मी वो आखिरी गाना था जिस लेवल पर कल्चरल सैचुरेशन पहुंच गई थी, जहां गाना आने से पहले ही लगता था ये तो नेहा का जमाना है।

एंड देन इंडस्ट्री का टेस्ट बदल गया, नए सिंगर्स आए, नया साउंड आया। और सच ये है कि ये इंडस्ट्री किसी आर्टिस्ट को तब तक ही सर पर बिठाती है जब तक वो करंट ट्रेंड की जरूरत है। तो आज जब नेहा के पुराने हिट चलते हैं तो नोस्टैल्जिया किसी एक सिंगर का नहीं है, एक पूरे बॉलीवुड ईरा का होता है। इसलिए आज मेरा स्पेशल रिक्वेस्ट उस दौर के नाम जहां हर जगह गूंजता था नेहा कक्कड़ का नाम। Here is Aankh Mare from Simba. Top 20 Rewind.

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: नंबर 15।

पिया बॉलीवुड का सबसे फेवरेट रोमांटिक वर्ड, लेकिन कभी सोचा है कि रोजमर्रा की जिंदगी डेली लाइफ में हम इस वर्ड को बिल्कुल नहीं यूज करते। रियल लाइफ में अगर आप किसी को पिया बोल दोगे ना तो वो शायद शर्मा जाए या फिर आप पर शक करने लगे, लेकिन हिंदी सिनेमा ने पिया को कभी रिटायर नहीं होने दिया। 90s में फाल्गुनी पाठक ने इसे पॉप कल्चर का रिदम बना दिया था। Then 2000s में राहत फतेह अली खान ने इसे सूफी पोएट्री का रूप दे दिया।

0: बॉयफ्रेंड वर्ड प्रैक्टिकल है, पार्टनर वर्ड कॉर्पोरेट लगता है और लवर वर्ड थोड़ा रिस्की है, लेकिन पिया में रोमांस के साथ एक अलग ही पोएट्री है। और आज इतने सालों बाद प्यार को शायद नाम से ज्यादा एक सवाल की जरूरत है, जब दिल चाहता है कि सामने वाला बिना कहे सब समझ जाए। सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड तमन्ना भाटिया की एक फिल्म आ रही है वन, लेकिन इसमें एक ऐसा गाना है विच ब्रिंग्स बैक द कोलैबोरेशन ऑफ सिद्धार्थ एंड जुबिन नौटियाल दैट गेव अस राता लंबिया इन शेरशाह एंड तुम ही आना इन मरजावा। इस बार दे ब्रिंगिंग अस अ गाना जहां फोकलोर और जज्बात मिलते हैं। नंबर 14 पर डेब्यू कर रहा है समझो ना फ्रॉम वन।
1: नंबर 14

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट
0: मिर्ची इट्स हॉट मिर्ची इट्स हॉट सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
2: नंबर 13 तूने

0: नंबर 12 पर है साड़ी फ्रॉम धमाल 4, जहां लॉजिक को पॉकेट में रखकर बस मैडनेस एंजॉय करनी होती है। एंड बाय द वे, दिस फिल्म इज नाउ ऑन OTT। लेकिन बॉलीवुड स्क्रीन पर पिछले कुछ वक्त में एक चीज बहुत स्ट्रॉन्गली फील हुई है। लार्ज स्केल रिलीजेस हुए, नए स्टार्स आए, लेकिन एक सुपरस्टार की फिजिकल एब्सेंस स्क्रीन पर बहुत भारी पड़ी, शाहरुख खान। 2023 में पठान, जवान और डंकी के बाद शाहरुख खान स्क्रीन से गायब हो गए, और तब रियलाइज होता है कि कुछ लोगों का ना होना भी कितना बड़ा इवेंट होता है। अब क्रिसमस पर किंग के साथ उनका वेट खत्म होने वाला है, लेकिन इतने बड़े स्टारडम के बाद शाहरुख खान खुद अपनी कामयाबी को कैसे देखते हैं?
1: मेरे को ना भगवान ने इतना दे दिया कि मेरी औकात से ज्यादा है। ये कोशिश करता रहता हूँ कि एट द एंड ऑफ माय लाइफ और करियर उतना काम कर जाऊँ कि मुझे लगे कि यार मैं डिजर्व करता था। मुझे बड़ी सरोज खान जी ने बोला था, एक बार मैं आया शूटिंग पे, तो तब हम 3 दिन शिफ्ट करते थे, तो मैं ऐसा आया यार थक गया, इतना काम है, मैं परेशान हो गया हूँ। उन्होंने से मुझे यहाँ पे थप्पड़ मारा ऐसा, क्योंकि बेटा एक बात याद रखना, एज एन आर्टिस्ट कभी ये मत कंप्लेन करना कि ज़्यादा काम, क्योंकि जब नहीं होता ना तो वो कंप्लेन बहुत बड़ी होती है। तो कभी मत कंप्लेन करना, बाकी हर चीज़ की कंप्लेन करो। सो मैं कोशिश करता रहता हूँ कि जितना हो जाए, जितना बन पड़े, और उससे भी ज्यादा कर सकूँ और खुशी से कर सकूँ।
0: शाहरुख खान ने यहाँ एक बहुत गहरी बात कही थी कि मुझे मेरी औकात से ज्यादा मिला है, अब कोशिश यही है कि मैं इसके लायक बनूं। उनका कद, उनका स्टैचर, वो सिर्फ उनके बॉक्स ऑफिस नंबर से नहीं बना, वो बना है इस बात से कि उन्होंने अपने काम को कभी अपना हक नहीं समझा। एंड जब बात कद की हो रही है, तो नंबर 11 पर तो है अक्षय कुमार की फिल्म वेलकम टू द जंगल का ये एनर्जेटिक चार्ट बस्टर ऊंचा लंबा कद। बट शाहरुख खान एनर्जी इज अनपैरेलल्ड, और उसका सिर्फ एक ही सबूत है मेरे पास, ट्रेन के ऊपर कोई ऐसे कैसे नाच सकता है, अलोंग विद मलाइका अरोरा खान। ये गाना है आइकॉनिक, दिस वन इज छैया छैया फ्रॉम दिल से। टॉप 20 रिवाइंड।

सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट 98.3 मिर्ची इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot. Suren ke saath, only on Mirchi, it's hot.
1: Number 10.

मिर्जापुर को पहले सिनेमा हॉल की जरूरत नहीं थी, उसने अपना एम्पायर लोगों के लिविंग रूम्स में बनाया था। लेकिन जब वही दुनिया थिएटर में पहुंची तो ऑडियंस ने बिना किसी हिचकिचाहट के टिकट काउंटर पर लाइन लगा दी। इंडियन एंटरटेनमेंट में पहले सिनेमा से एक्टर्स टीवी पे जाते थे और फिर ओटीटी पर, लेकिन मिर्जापुर ने फ्लो ही उल्टा कर दिया। डिजिटल स्क्रीन्स पर जन्म लेने वाली दुनिया ने मल्टीप्लेक्सेस को ही कैप्चर कर लिया, क्योंकि कालीन भैया और गुड्डू पंडित अब कैरेक्टर्स नहीं रहे, ऑडियंस का पर्सनल रिलेशनशिप बन चुके हैं। ये सिर्फ हमें बताता है कि आने वाले वक्त में सिनेमा का सबसे बड़ा सवाल ये नहीं होगा कि फिल्म का बजट कितना है, सवाल ये होगा इस दुनिया के फैंस कितने कमिटेड हैं। जैसे आवारापन के फैंस कितने कमिटेड थे कि इमरान हाशमी को फिर से अपने सर आंखों पर बिठा लिया। एंड एक ऐसी ही बिल्कुल नई स्टाइलिश दुनिया से इसके बाद वाला गाना है, विच इज ऑन नंबर 8, अमित त्रिवेदी की म्यूजिक डायरेक्टर और सिंगर वाली डबल एनर्जी। दिस इज फ्रॉम कुणाल खेमू की आने वाली फिल्म वाइब, रातों में आना। नंबर

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट
0: मिर्ची इट्स हॉट के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
2: नंबर 7।

0: बिग बजट स्पेक्टिकल फिल्म्स और इमोशनल ह्यूमन सिनेमा में एक बहुत बड़ा फर्क होता है। स्पेक्टिकल फिल्म्स के पास स्केल होता है, वीएफएक्स होता है, लेकिन इमोशनल सिनेमा के पास ऑडियंस की मेमोरी की करेंसी होती है। आवारा पंटू के साथ वही इमोशनल करेंसी जुड़ी हुई है। और इस फिल्म के म्यूजिक के पीछे दो भाइयों की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कहानी है, अमाल एंड अरमान मलिक। जब ये आवारापन कंपोज हो रहा था तब सबको लगा होगा कि अमाल ये गाना अपने भाई अरमान से गवाएगा, क्योंकि आफ्टर ऑल दोनों भाई हिंदी फिल्म म्यूजिक से काफी टाइम से दूर थे। लेकिन अमाल ने अरमान को नहीं चुना, उन्होंने अरिजीत सिंह को चुना, और इसके पीछे भी एक काफी सॉलिड रीजन है।
1: अगर मेरे को पता है कि ये गाना अरमान भी गा सकता है या उन दोनों के अलावा मैं भी गा सकता हूँ, बट सबको एक चॉइस होनी चाहिए। मैं अरमान को भी 5-6 गाने भेजता हूँ, उसमें उसको फोर्स नहीं करता कि हर गाना गाते। There have been songs like चल वहां जाते एंड सोच ना सके जो अरमान ने गाए, एंड उसको हटा के हमने अरिजीत को लिया है। Then there is a बेस अबरिया फ्रॉम MS धोनी जो अरिजीत ने गाया है, वो हट के अरमान ने बाद में गाया। सो दीज आर क्रिएटिव कॉल्स। और मेरी एक अंडरस्टैंडिंग है मेरे सिंगर्स के साथ कि मैं सबको इन्फॉर्म्ड भी रखता हूँ कि ये गाना शायद ये सिंगर से भी हम ट्राई करेंगे।
0: ये एक सच्चे म्यूजिशियन की पहचान है। अपने भाई से प्यार करना एक बात है, लेकिन गाने की आत्मा के साथ ऑनेस्टी दिखाना दूसरी बात। अमाल ने भाई से ज्यादा गाने की सुनी, और इस गाने की किस्मत देखिए, अरिजीत ने इस गाने के लिए अपनी टेम्पररी सिंगिंग रिटायरमेंट को तोड़ दिया, और अमाल ने इस ट्रैक के बाद म्यूजिक से पॉज ले लिया। दोनों थक कर रुक गए, लेकिन गाना आगे निकल गया। उन लोगों के लिए जिन्होंने इमरान हाशमी के गानों को सिर्फ सुना नहीं है, अपनी जवानी में जिया है, एट नंबर 5 इज ये आवारापन। नंबर 5।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट
0: मिर्ची इट्स हॉट सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट नंबर

0: इतने हफ्तों से गहरा हुआ का नंबर 3 पर बने रहना इस बात का प्रमाण है कि धुरंधर ने रणवीर सिंह के करियर को दो हिस्सों में बांट दिया है, बिफोर धुरंधर एंड आफ्टर धुरंधर। और रणवीर की इस जर्नी को देखकर मुझे 2011 का रणबीर कपूर याद आता है। रॉकस्टार से पहले रणबीर एक बहुत ही प्रॉमिसिंग यंग स्टार थे, लेकिन इम्तियाज अली की उस फिल्म ने रणबीर के अंदर की सारी बेड़ियां तोड़ दी। नाउ मजेदार बात यह है कि इम्तियाज अली ने जब रॉकस्टार लिखी थी, ओरिजिनली उनके दिमाग में रणबीर थे ही नहीं।
1: रणबीर कपूर को फिल्म में लेने का कोई सवाल नहीं उठता था जब मैंने रॉकस्टार लिखी थी। पहले मैं जॉन इब्राहिम के साथ वो फिल्म बनाने वाला था। एक्चुअली जब मैंने मूवी लिखी, रणबीर कपूर एक्टिंग नहीं कर रहे थे। सोचा ना था कि बनने में 4 साल लग गए थे, और उसमें मुझे अपने आप को पागलपन से बचाने के लिए कुछ रेलेवेंट काम करना बहुत जरूरी था। तो इस चक्कर में मैं स्क्रिप्ट्स लिखा करता था, उसमें से एक स्क्रिप्ट थी रॉकस्टार। मेट रणबीर अ कपल ऑफ टाइम्स, फिर हम लोग दोनों ने फैसला किया कि हम कुछ साथ में बनाएं। उसके बाद फिर मैं उनके घर गया एक कहानी सुनाने के लिए, तो उसने कहा कि अच्छा आपकी मैंने एक कहानी सुनी है, तो उस कहानी में एक रॉकस्टार होता है। फिर उसने मुझे नरेट किया, दिस इज अ यूनिक नरेशन वेयर आई वेंट टू मीट एन एक्टर एंड द एक्टर नरेटेड द स्टोरी टू मी।
0: जॉन इब्राहिम से शुरू हुई स्क्रिप्ट जब 24 साल के रणबीर तक पहुंची तो एक डायरेक्टर को अपना जॉर्डन मिल गया। जॉर्डन को हीरो नहीं था वैसे, वो गुस्से, वल्नरेबिलिटी और सेल्फ डिस्ट्रक्शन का एक तूफान था। रणबीर ने जॉर्डन को एक्टिंग से नहीं, अपनी रगों से जिया था। उस दिन के बाद इंडस्ट्री ने रणबीर से पूछना बंद कर दिया कि आप क्या कर सकते हो, और देखना शुरू कर दिया कि आप कितना दूर जा सकते हो। टुडेस पिक ऑफ द वीक इज द ट्रैक दैट चेंज्ड रणबीर्स डेस्टिनी फॉरएवर फ्रॉम रॉकस्टार। दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स बाय मोहित चौहान एंड ए आर रहमान एंड इरशाद कामिल। इस गाने का नाम है जस्ट लाइक द फिल्म। जो भी मैं कहना चाहूं पर बात करे अल्फाज मेरे।
2: Pick of the week.

Mirchi. It's hot. Surin ke saath, only on Mirchi. It's hot. Number 2.

नंबर दो पर चुनरी चुनरी का चढ़ना एक मैडनेस है यार। रिलीज के इतने महीनों बाद भी ये गाना रुकने को तैयार ही नहीं है। लेकिन नंबर वन पर जो गाना बैठा हुआ है काफी कंफर्टेबली, उसके साथ मेरा एक बहुत पर्सनल कनेक्शन है। मैं कोई क्लासिकल म्यूजिशियन नहीं हूं, मुझे म्यूजिक की टेक्निकलिटी समझ नहीं आती है, कंपोजिशन के अंदर क्या क्या जाता है आई डोंट नो। लेकिन हाल ही में मैंने तेरा मेरा रिश्ता का एक अलग ही वर्जन सुन लिया, एक सूफी कव्वाली वर्जन, नियाजी निजामी भाइयों की आवाज में।

फिल्म का ओरिजिनल वर्जन एक अकेले टूटे हुए आदमी की खामोश दुआ है, जैसे रात के सन्नाटे में कोई खुदा से अकेले में कुछ पूछ रहा हो। लेकिन कव्वाली वर्जन में वही दर्द एक महफिल का हिस्सा बन जाता है। हारमोनियम की गहरी सुरीली पत्ती के ऊपर जब तालियां और कोरस जुड़ता है तो लगता है जैसे एक इंसान की तन्हा पुकार को पूरी महफिल ने अपनी आवाज दे दी हो। सिंगल वॉइस अंदर खींचती है, कव्वाली उस दर्द को बांट लेती है, और शायद यही पहचान होती है ऑफ दीज ग्रेट सॉन्ग्स। सिंगर्स बदल जाएं, अरेंजमेंट बदल जाए, जमाना बदल जाए, लेकिन जज्बात वो कभी नहीं बदलते। 19 साल बाद भी ये गाना किसी एक फिल्म का नहीं, हर टूटे और जुड़े दिल का है। स्टिल रेनिंग एट नंबर 1, दिस इज तेरा मेरा रिश्ता, एक ऐसा रिश्ता जो है 19 साल पुराना।

0: कुछ गाने चार्ट से निकल जाते हैं लेकिन हमारी मेमोरी से कभी नहीं निकलते, इसलिए हम बार बार उनके पास खींचे चले आते हैं, हर बार अपने अंदर का एक नया पन्ना पढ़ने के लिए। अगर इस बार के मिर्ची टॉप 20 में आपको अपनी कोई पुरानी याद, कोई अधूरी बात या कोई नया एहसास मिला हो तो समझ लेना कि हमारा सफर पूरा हो गया है। So until the next time I meet you here on the Mirchi Top 20, this is Surain, over and out.
1: Surain ke saath, only on Mirchi. It's hot. 98.3 Mirchi. It's hot.
2: Mirchi, it's hot.

0: मिर्ची मिर्ची।
1: Hello people, welcome to Club Mirchi. Weekend आ गया और weekend का मतलब plans. अब किसी के plans में गोवा है, किसी के plans में night club और कुछ लोग हैं जो सिर्फ weekend पे Club Mirchi सुनते हैं with DJ Richard and Mirchi और Yontika. क्योंकि weekend के लिए भाई crowd जरूरी नहीं, थोड़ा music, थोड़ी mood और zero responsibilities for a few hours, बस. So let's start this episode with our favorite Ek Din Teri Raho Mein. Let's go!

नहीं, वीकेंड का प्लान पानी पानी नहीं करेंगे, क्लब मिर्ची सुनेंगे और साथ में झूमेंगे। डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंतिका आपके साथ। दिस इज द साउंड ऑफ द फ्यूचर।

वीकेंड में दो चीजें आसमानी होनी चाहिए, एक्सपेक्टेशंस और हील्स। बाकी बिल जमी पर ही रहे, वरना मंडे का मूड खराब हो जाएगा। क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन योर टिकट।

वीकेंड क्रश का भी अलग ही नशा है। फ्राइडे को लगता है दिस कुड बी समथिंग, संडे तक रियलिटी चेक मिल ही जाता है। क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोंतिका, वेलकम बैक।

बारिश हो या वीकेंड, मूड तो है ही लेजी। क्लब मिर्ची विद टीजर रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयोन का पार्टी कैंसिल करने का बेस्ट एक्सक्यूज मिल गया। एंजॉय करे एक साथ लेजी लम्हे।

Why do I kid myself?

टू क्लब मिर्ची, डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंतिका आपके साथ। वीकेंड रोमांस का भी अपना ही प्रेशर है। कपल्स को डेट प्लान करना है, सिंगल्स को प्रिटेंड करना है दैट द लव बीइंग सिंगल, और सबको इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालनी है। यही तो है सोशल मीडिया, इश्क जैसा कुछ।

मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन योंतिका। वीकेंड पार्टी के बीच में एक मोमेंट आता है जब डीजे वॉल्यूम बढ़ाता है और वॉलेट क्वाइटली प्रेयर करता है, मौला मेरे मौला यूपीआई बैलेंस बचाना। क्लब में

जरूरी है क्लब मिर्ची मिर्ची रिचर्ड मिर्ची और योंटी का, बस वॉलेट के साथ मत करना यार, कल सुबह बैंक स्टेटमेंट देख के बेला चाओ खुद बोलना पड़ेगा।

0: Mirchi, it's hot.
1: Ladies and gentlemen, we are gonna go.

वेलकम बैक पार्टी पीपल, क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका। वीकेंड पे किसी को अपना बनाना है, सिंपल फूड ऑर्डर कर दो यार, म्यूजिक लगाओ और उनका फेवरेट डिजर्ट सीक्रेटली सेव कर लो। रोमांस सॉल्व्ड।

वीकेंड हग्स और फ्री थेरेपी क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोंतिका। और अगर इसी हग के बाद कोई बोले चलो पार्टी का बिल स्प्लिट करते हैं तो रोमांस वहीं पे खत्म। सिफारिश तो जरूरी है लेकिन फॉर नाउ सिर्फ खुद के लिए ही सिफारिश करो यार।

वेलकम बैक टू क्लब मिर्ची, डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योमतिका एक साथ। तो वीकेंड पे सिर्फ एक ही दुआ है, मंडे दूर रहे, बैटरी फुल रहे और पार्टी में वो दोस्त ना आए जो हर गाने पे डीजे बन जाता है। या अली, तोड़ दुश्मन की गली।

हाँ हाँ सब चिल्ड्रन ही तो बन जाते हैं वीकेंड पे क्लब मिर्ची रिचर्ड मिर्ची ओंतिका। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि बच्चों को घर वाले सुलाते हैं, हम खुद संडे को बेड से नहीं उठते। खैरियत रहती है क्या? चलो लेट्स जैम टुगेदर।

0: कल किसी के और जा रहा है तो जाने दो यार, बस पहले कंफर्म कर लो कि वो भी तुम्हारी ओर आना चाहती है कि नहीं।
1: लव मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन योंटिका बेबी।

मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयल टिकाऊ। प्यार तो मुश्किल है ही और वीकेंड पे होटल रूम सर्विस भी। मेन्यू देखो, प्राइसेस देखो, फिर मैगी ऑर्डर करके सेल्फ रिस्पेक्ट सेव कर लो यार।

मिर्ची बजी है रिचर्डन मिर्ची और योंते का वीकेंड पार्टी का एक स्टेज होता है जब कोई म्यूजिक समझता ही नहीं, स्टेप्स समझता ही नहीं, फिर भी सेंटर में जाके जमाल कुदू कर रहा होता है, तो गाना ही एंजॉय कर लेते हैं।

0: कुछ ना कुछ जरूर जाता है, एनर्जी, वॉइस, कभी कभी डिग्निटी. ले गई ले गई. क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन योर टिका.
1: डोंट इवन बदर टू एक्सप्लेन, ही सेज, cuz आई डोंट वांट टू हियर इट. जस्ट गेट यस.

तब होता है जब तीन लोग बोलते हैं मैं सोबर हूँ और तीनों एक साथ सोफे पे जाके गिरते हैं। क्लब मिर्ची विद डीजे एंड रिचर्ड मिर्ची और योंतिका एंड यू

वेलकम बैक, क्लब मिर्ची जा रही है बच्ची, जे रिचर्ड एंड मिर्ची और यों देखा। वीकेंड पार्टी के बाद संडे को एक ही सवाल पूछना है, वो भी मिरर को, हु इज द मैन इन द मिरर, क्योंकि हुलिया ही बदल जाता है हमारा, है कि नहीं।

0: I got what you need. Nothing can stop me. I'm all the way up.
1: वीकेंड पार्टी में एनर्जी ऑल द वे अप क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका एंड नाउ हियर कम्स द हॉट स्टेपर.

वेलकम बैक, क्लब मिर्ची जा रही है। डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंतिका आपके साथ। अब वीकेंड में ओ माही वाइब्स तो ऑफ कोर्स मिलेगी। रोमांस हो या ब्रोमांस, बस कोई तो हो जो बोले चल पार्टी करते हैं।

सीरियसली टेस्ट जब फेवरेट सॉन्ग आए और आपका फ्रेंड बोले मैं डांस नहीं करता, 5 seconds later मकड़ा मोड ऑन एंड द फ्लोर इज गोइंग क्रेजी।

मिर्ची में टीचर रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोंतिका वेलकम बैक पीपल। वीकेंड आते ही शेर खुल गए। फ्राइडे तक जो ऑफिस में गुड मॉर्निंग सर बोल रहे थे, आज डांस फ्लोर पे बोलेंगे हेलो मूव।

Well, that's Fedley Grand, Club Mirchi with DJ Richard, Mirchi और योंतिका. पार्टी पे चले? Well, let me think about it. Because पार्टी आपके घर पहुंच गई यार.

डांस बसंती, वीकेंड पे डांसिंग का कोई रूल नहीं, स्टेप्स गलत हो सकते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं। एम्बैरेसमेंट इज ऑल्सो अ ग्रुप एक्टिविटी टुडे ऑन क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोंतिका।

वेलकम बैक पार्टी पीपल, क्लब मिर्ची जा रही है, डीजे रिचर्ड मिर्ची और योम्तिक आपके साथ। वीकेंड सनी हो या रेनी, पार्टी मूड सनी तो होना ही है, तो लेट्स हियर सनी सनी टुगेदर।

और म्यूजिक लाउड, मूड लाउडर। नेबर्स कंप्लेन करे तो वॉल्यूम कम कर देना, पड़ी नहीं। प्रायोरिटीज पीपल, क्लब मिर्ची डेज विद डीजे रिचर्ड, मिर्ची और योम्तिका।

वीकेंड पे ये मेरा दिल किसी को भी दे सकती हूँ मैं, बट क्रेडिट कार्ड नेवर, दैट्स इमोशनली अनअवेलेबल. क्लब मिर्ची विद डीजे मिर्ची एंड मिर्ची ऑन टिका.

वेलकम बैक, क्लब मिर्ची जा रही है। डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंतिका आपके साथ। अब वीकेंड में ओ माही वाइब्स तो ऑफ कोर्स मिलेगी। रोमांस हो या ब्रोमांस, बस कोई तो हो जो बोले चल पार्टी करते हैं।

सीरियसली टेस्ट जब फेवरेट सॉन्ग आए और आपका फ्रेंड बोले मैं डांस नहीं करता, 5 सेकंड्स लेटर मकड़ा मोड ऑन एंड द फ्लोर इज गोइंग क्रेजी।

मतलब मिर्ची मिर्ची चर मिर्ची और मिर्ची ओंतिका. वेलकम बैक पीपल. वीकेंड आते ही शेर खुल गए. फ्राइडे तक जो ऑफिस में गुड मॉर्निंग सर बोल रहे थे, आज डांस फ्लोर पे बोलेंगे हेलो मूव टू

बस पेडले ग्रैंड क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंतिका पार्टी पे चले। वेल लेट मी थिंक अबाउट इट, बिकॉज़ पार्टी आपके घर पहुंच गई यार।

बसंती, वीकेंड पे डांसिंग का कोई रूल नहीं, स्टेप्स गलत हो सकते, कॉन्फिडेंस नहीं। एम्बैरेसमेंट इज ऑल्सो अ ग्रुप एक्टिविटी टुडे ऑन क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोंतिका।

वेलकम बैक पार्टी पीपल, क्लब मिर्ची जा रही है, डीजे रिचर्ड मिर्ची और योमतिक आपके साथ। वीकेंड सनी हो या रेनी, पार्टी मूड सनी तो होना ही है, तो लेट्स या सनी सनी टुगेदर।

म्यूजिक लाउड, मूड लाउडर। नेबर्स कंप्लेन करे तो वॉल्यूम कम कर देना, पार्टी नहीं। प्रायोरिटीज पीपल, क्लब मिर्ची डेज विद डीजे रिचर्ड, मिर्ची और योम टिका।

वीकेंड पे ये मेरा दिल किसी को भी दे सकती हूँ मैं, बट क्रेडिट कार्ड नेवर, दैट्स इमोशनली अनअवेलेबल. क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची आयोंतिका.

कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

0: मिर्ची, इट्स हॉट।
1: तो वेलकम टू द देवदत्त पटनायक शो, जहाँ पे हम हनुमान को डिस्कस कर रहे हैं, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गॉड्स इन हिंदुइज्म।
0: द देवदत्त ऑन रेडियो मिर्ची,
2: द देवदत्त पटनायक शो,
0: कॉलिंग देवदत्त
2: ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
1: गांव गांव में उनकी मूर्तियां होती हैं, पूजा होती है। सो इफ आई एम श्योर यू हैव मेनी क्वेश्चंस ऑन हनुमान, तो जो भी क्वेश्चन है प्लीज पिक अप द फोन एंड आस्क मी द क्वेश्चन। आई एम एक्साइटेड टू हियर फ्रॉम यू। हेलो, देवदत्त हियर।
3: हाय, माय नेम इज अक्षता एंड आई एम कॉलिंग फ्रॉम मुंबई। मेरा क्वेश्चन ये है कि हनुमान जी को सिंदूर क्यों लगाते हैं, इसके पीछे कोई लॉजिक है क्या?
1: थैंक्स अक्षता फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये जो सिंदूर है, लाल रंग जो होता है, ये भारत में से मंगल मतलब ऑस्पिशियस सिंबल माना जाता है, ऑस्पिशियस कलर माना जाता है, और हनुमान जी को हम मंगल मूर्ति भी मानते हैं। सो इट इज़ अ सिंबल ऑफ ऑस्पिशियसनेस, इसलिए उनको लाल रंग दिया जाता है। गणपति जी को भी मंगल मूर्ति मानते हैं, इसलिए उसके लाल रंग दिया जाता है। सो लाल रंग मांगल्य, मांगल्य इज प्रॉस्पेरिटी, एफ्लुएंस, गुड लक, चार्म, तो ये देवी के साथ जुड़ा हुआ है। और नॉर्मली लाल रंग हम देवी को जोड़ते थे, और बोथ गणेश एंड हनुमान आर लिंक्ड टू द शाक्त परंपरा, और इसलिए हनुमान जी की मूर्ति को मांगल्य बनाने के लिए, नहीं तो वो बहुत ही यू नो वेरी मैस्कुलिन इमेज जो है, वायलेंट इमेज है, बिकॉज उसके हाथ में वेपन्स हैं एंड ही इज फाइटिंग। लेकिन जब आप लाल लगाते हो तो वो शुभ बन जाता है, दैट इज द रीजन। आजकल लोग ऑरेंज कलर दे रहे हैं जो वैरागियों का रंग है, लेकिन मंगल रंग इज लाल, इसलिए शादी का जोड़ा भी लाल होता है, चूड़ियां लाल होती हैं, दैट इज द रीजन। ऑफ कोर्स देयर आर स्टोरीज कि उन्होंने देखा कि सीता जी लाल रंग सिंदूर डाल रही हैं, इसलिए उन्होंने अपने पूरे शरीर को ढक दिया, ये सब लोक कथाएं हैं। लेकिन क्रियाओं की तरफ, फ्रॉम रिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू, लाल जहां लगा जाएगा, जैसे अलता होगा, ये होगा, इसे मंगल का शुभ है, शाक्त सिंबल है, देवी का चिन्ह है। That is the purpose. All
3: right. Thank you so much for the answer. Thank you.
1: Welcome, Akshata. Yeah. तो अक्षता का question was about सिंदूर रंग, और ये लाल रंग जो होता है, ये traditional color है जो हनुमान जी के साथ जुड़ा हुआ है। Normally जो male gods होते हैं उनको लाल रंग very rarely दिया जाता है, क्योंकि हनुमान जी को देवी का सेवक माना गया है, वो prosperity लेके आते हैं, इसलिए लाल रंग दिया जाता है।
0: On Radio Mirchi.
2: The Devdutt Patnaik Show.
4: क्या है हनुमान और पंचमुखी हनुमान में अंतर, बताएंगे देवदत्त। Keep listening.

0: वेलकम बैक टू द देवदत्त पटनायक शो ऑन रेडियो मिर्ची।
1: देवदत्त ऑन रेडियो मिर्ची।
2: द देवदत्त पटनायक शो।
1: द देवदत्त पटनायक शो
2: ऑन रेडियो मिर्ची। इट्स हॉट।
0: सो नाउ आई वांट टू डिस्कस माय वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इमेजेस ऑफ हनुमान, जो पंचमुखी हनुमान जिसके कहते हैं। तो पंचमुखी हनुमान की मूर्ति अगर आप देखे होंगे तो इट इज नॉट, यू नो, इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्टैचू। नॉर्मली हनुमान जी की मूर्ति राम के मंदिर में होती है और वो वहां पे एक सेवक के रूप में, एक दास के रूप में हाथ जोड़ के बैठे रहते हैं राम के चरण पे। लेकिन पंचमुखी हनुमान जो होता है वो मंदिर में केवल हनुमान जी की मूर्ति होती है वो, और उनके दो हाथ नहीं, उनके 10 हाथ होते हैं और उनके एक सर नहीं, 5 सर होते हैं और एक ही सर वानर का रूप लेता है। बाकी 4 जो है, एक घोड़े का होता है, एक शेर का होता है, एक वराह या जंगली सुअर का होता है और एक गरुड़ का होता है। पंचमुखी हनुमान की स्टोरी हमें अद्भुत रामायण से आती है। अद्भुत रामायण में कहते हैं कि राम गेट्स डिसअपियर्स और उसे पाताल लोक में कोई लेके चला जाता है और हनुमान जी हैज नाउ टू डू एवरीथिंग एंड फाइंड रेस्क्यू राम। तो स्टोरी है हाउ डज हनुमान गो टू पाताल लोक। इसलिए पंचमुखी हनुमान को कभी कभी लोग पाताली हनुमान भी बोलते हैं और पाताली हनुमान कुछ मंदिरों में उन्हें अपसाइड डाउन रखा जाता है बिकॉज वो पाताल में गए हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग, ये पंचमुखी क्यों बने हैं? क्योंकि हनुमान जी वहां पे डिस्कवर्स कि वो केवल वानर नहीं है, उनके अंदर बहुत क्षमता है। वो गरुड़ के जैसे भी काम कर सकते हैं, वो वराह के जैसे काम कर सकते हैं, वो शेर की भांति काम कर सकते हैं, वो घोड़े के जैसे भी काम कर सकते हैं। उनके अंदर कितनी कैपेबिलिटीज हैं, ये मूर्ति है दिखाने के लिए कि जो एक वानर है वो महाबली कैसे बना। सो रामदास से महाबली की यात्रा, द ट्रांसफॉर्मेशन। जो सिंपल एक रामदास था जो इंस्ट्रक्शंस लेता था, वो कार्य करता था, जो राम बोलते थे वो करते थे, लेकिन पंचमुखी हनुमान के जगह में वो कर्ता बन जाते हैं। ही इज द पर्सन हु टेक्स इनिशिएटिव, ही सॉल्व्स प्रॉब्लम्स और अंदर की अपनी जो पोटेंशियल है डिस्कवर करते हैं। आई एम श्योर आपके अंदर भी बहुत पोटेंशियल है टू डिस्कवर एंड यू मस्ट फाइंड दिस पोटेंशियल सो दैट द होल डे यू फाइंड द हनुमान इनसाइड यू एंड क्रॉस द ओशन टू सक्सेस। So, best wishes and stay tuned for more interesting questions and answers and stories on the Devdutt Patnaik show on Mirchi.
1: The Devdutt on Radio Mirchi.
2: The Devdutt Patnaik show.
3: हमें ही नहीं हनुमान को भी मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। कब और क्यों बताएंगे देवदत्त।

0: वेलकम बैक टू द देवदत्त पटनायक शो ऑन रेडियो मिर्ची। यू नो, मैं हनुमान के बारे में बहुत लिखा हूँ मेरी किताबों में, मेरे एसेज में। मैंने हनुमान चालीसा के ऊपर एक किताब लिखी है, माय हनुमान चालीसा, जहाँ पे यू नो हर जो दोहा चौपाई उसके अंदर इतना ज्ञान है हनुमान जी के कथाओं में कि हर लाइन में ज्ञान होता है, एक आइडिया होता है, एक थॉट होता है, एक विश, यू नो, यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि हनुमान जी के माध्यम से हमें कितनी चीजें बताई जा रही हैं। सो मेनी आइडियाज आर बीइंग प्रेजेंटेड टू अस। और ऐसे स्टोरीज जब आते रहते हैं, तो एक स्टोरी है यू नो विच इज यू नो लिंक्ड टू हनुमान, विच यू नो ऑलवेज रिमाइंड्स मी दैट भगवान भी कितने हम्बल होते हैं हमारे सामने। कहते हैं कि जब हनुमान जी यू नो लंका के लिए जा रहे थे, देन ही वाज यू नो वो शोर ऑफ समुद्र के बगल में थे और सब बोल रहे थे, ऑल वानर्स वर गैदर्ड ओवर देयर, सामने समुद्र दिखाई दे रहा था, द ब्लू सी स्ट्रेचिंग अक्रॉस, कहीं बियॉन्ड होराइजन में सोने की लंका थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कितने दूर है होने वाला है ये। तो सब वानर बोल रहे थे इतना दूर तो हम छलांग नहीं मार सकते, कोई बोल रहा था हमें इतना योजन मींस इट्स अ मेजरमेंट टूल कि कितने माइल्स होते हैं यू नो, तो योजन कितने योजन तुम जा सकते हो। सो कोई बोल रहा था हमें 10 योजन जा सकते हो, कोई 50 योजन, तो हनुमान कुछ नहीं बोल रहा था, चुप बैठा था। तो जांबवन जो बैर जो भालू थे वो जाके हनुमान जी से पूछते हैं कि तू कितना कर सकता है, एंड हनुमान से मुझे पता नहीं मेरे में कितनी ताकत है। इमेजिन हनुमान जी बोल रहे हैं कि मुझे पता नहीं मैं क्या कर सकता हूँ, ही इज फुल ऑफ डाउट। एंड दैट टाइम हनुमान जी को जांबवन उनका वर्णन करते हैं और उनकी पूजा करते हैं और बोलते हैं कि आप कितने महान हो, डू यू नो हाउ ग्रेट यू आर, आप शिव जी के एक अवतार हो, आप सूर्य भगवान से आपने ज्ञान प्राप्त किया है, वायु आपके पिता हैं, तो यू हैव ऑल द विजडम, आप प्रिय हो राम जी के, उन्होंने आपको भाई जैसे माना है, सो इतना स्ट्रेंथ है। सो ही कीप्स प्रेजिंग हिम एंड कीप्स प्रेजिंग हिम, एंड हनुमान जब ये सुनते हैं, ही स्टार्ट्स ग्रोइंग इन साइज, ही बिकम्स बिगर एंड बिगर एंड बिगर एंड बिगर एंड बिगर, ही बिकम्स सो बिग कि उनकी जो सर बोलते हैं कि इट गोज बियॉन्ड द स्काई, इतने लंबे हो जाते हैं, पहाड़ भी उनके सामने छोटे छोटे दिखने लगते हैं, एंड देन वो छलांग मार के जाते हैं लंका के तरफ। और मतलब हनुमान जी को भी टू डिस्कवर हिज पावर्स कुछ मोटिवेशन की जरूरत होती है, एंड वी ऑल हैव अ हनुमान इनसाइड अस, हम सबको मोटिवेशन चाहिए। यू नो लोग हमेशा हमें हमारी नेगेटिव पॉइंट्स बताते हैं कि अरे तू ये नहीं करता है, तू वो नहीं करता, तू ये नहीं करता है, बहुत कम लोग होते हैं जो हमें हमें पॉजिटिव पॉइंट्स देते हैं। यू नो भगवान की जब आरती जब हम करते हैं, जब हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, चालीसा में देखिए भगवान के पॉजिटिव पॉइंट्स बताते हैं, वैसे ही जब हम आरती करते हैं तो भगवान के पॉजिटिव पॉइंट्स बताते हैं। मतलब हर आदमी को आरती पसंद है, थोड़ा एक आध बार मेरे जो पॉजिटिव पॉइंट्स है उसको आप प्लीज वर्णन कीजिए। टेल योर फ्रेंड्स दैट दे आर गुड एट मे बी इन पोएट्री, मे बी दे आर गुड एज क्रिएटिव पीपल, दे आर वेरी ऑर्गेनाइज, दे ड्रेस वेल, छोटी छोटी बातें उनके अंदर जो हनुमान है उसे जागृत करते हैं। आई थिंक दैट इज द लेसन वी लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी ऑफ हनुमान बिकमिंग लाइक अ सुपरमैन, जंपिंग अक्रॉस द स्काइज एंड गोइंग टू सोने की लंका। तो ऐसे ही आइडियाज हम डिस्कस करते रहेंगे ऑन द देवदत्त पटनायक शो ऑन मिर्ची।
1: देवदत्त ऑन रेडियो मिर्ची।
2: द देवदत्त पटनायक शो।
3: हनुमान की जाति से जुड़ा एक और सवाल जब उठा तो क्या कहा देवदत्त ने? कीप लिसनिंग।

गगन घिरे बदरा, सगन लता पेड़ों से डगर डगर वन उपवन, छाया है अंधियारा। गगन घिरे बदरा, सघन लता पेड़ों से डगर डगर वन उपवन, छाया है अंधियारा। गगन घिरे बदरा, सघन लता पेड़ों से डगर डगर वन उपवन, छाया है अंधियारा। या शाम कन्हाई, ले जाओ इसको घर राधे, ले जाओ इसको घर राधे, ले जाओ इसको घर। नंदराय आदेश मान कर चली राधिके ले माधव को, यमुना तट लीला निकुंज में राधा माधव की यह लीला, राधा माधव की लीला सर्वोत्तम हो।

0: आज हम हनुमान के बारे में बात कर रहे हैं ऑन द देवदत्त पटनायक शो।
1: देवदत्त ऑन रेडियो मिर्ची।
2: द देवदत्त पटनायक शो
1: कॉलिंग देवदत्त
2: ऑन रेडियो मिर्ची। इट्स हॉट।
0: जब जिज्ञासा होती है तो प्रश्न आते हैं और प्रश्न से ही अच्छे उत्तर मिलेंगे। सो प्लीज आस्क मी क्वेश्चंस ऑन हनुमान। पिक अप द फोन राइट नाउ एंड आई एम वेटिंग फॉर योर कॉल।
3: हेलो
0: हेलो देवदत्त हियर।
3: हेलो देवदत्त सर।
0: Hi.
3: Hi, मेरा नाम भास्कर है एंड आई एम ह्यूज फैन ऑफ योर्स।
0: थैंक यू सो मच।
3: और मेरा एक क्वेश्चन था
0: जी
3: हनुमान को लेके।
0: तो
3: हनुमान जी की जाति को लेके कंट्रोवर्सी हुई है, क्या रामायण में हनुमान की जाति की बात कहीं पे की गई है?
0: देखिए जो शास्त्री होते हैं, जो पंडित होते हैं, इनसे दूर रहते हैं, तो ये राजनीति की बात है एंड यू नो वी शुड नॉट टेक दिस सो सीरियसली। हमारे जो शास्त्र है वो आत्मज्ञान के बारे में बात करते हैं और जहाँ आत्मज्ञान होता है वहाँ ऊंचा नीचा की बात नहीं होती। हनुमान जी इज वानर और वो महाबली हैं एंड ही इज, उनके जात से कोई संबंध नहीं है एंड वी शुड बी वेरी केयरफुल ऑफ दीज पोलिटिकल गेम्स दैट आर बींग प्लेड। आई पर्सनली कीप अवे। जितने भी शास्त्र मैंने पढ़े हैं मैंने एक चीज सीखा है, जहाँ आत्मज्ञान होता है वहाँ जात पात की बातें नहीं होती। जहाँ आत्मज्ञान नहीं होता, जहाँ अहंकार होता है, वहाँ जात पात शुद्ध अशुद्ध की बातें होती हैं। तो हमारे शो में हम ज़्यादातर आत्मज्ञान की बातें करेंगे, पॉजिटिव एनर्जी, मॉडर्न सोसाइटी, इक्वालिटी एंड जस्टिस। वी डोंट वॉन्ट टू डिस्कस दिस जाति, सो यू शुड नॉट बॉदर अबाउट दिस। ये पॉलिटिक्स होने दो ना शास्त्रों में। या सो दैट्स आई थिंक वी शुड जस्ट बी मोर मॉडर्न 21st century इंडियंस एंड दैट्स माई सजेशन। बेस्ट ऑफ लक।
3: थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।
0: वेलकम। तो हनुमान विद्वान है, बलवान है और जो विद्वान है उसके पास आत्मज्ञान होता है, जिसके पास आत्मज्ञान होता है वो जात पात में विश्वास नहीं करता।
1: देवदत्त ऑन रेडियो मिर्ची।
2: द देवदत्त पटनायक शो। क्यों जुड़े हैं हनुमान शिव विष्णु और देवी के साथ, बताएंगे देवदत्त। कीप लिसनिंग।

वेलकम बैक टू द देवदत्त पटनायक शो, जहाँ पे हम हनुमान जी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इन हनुमान जी के बारे में कितना बताना है आपको, लेकिन क्या करें, समय किसी के लिए रुकता नहीं है, शो अभी खत्म होने वाला है। और एक बात मुझे हनुमान जी के साथ बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कि हनुमान जी एक ही भगवान है, एक ही देवता है जो शिव जी के साथ जुड़े हुए हैं, विष्णु जी के साथ जुड़े हुए हैं और देवी के साथ जुड़े हुए हैं। अब शिव के मंदिर में जाओ तो हनुमान जी की मूर्ति कहीं मिल जाएगी, कहते हैं कि वो शिव जी के अंश हैं। अब विष्णु के मंदिर जाओ तो रामदास हैं, वो कृष्ण के साथ भी जुड़े हुए हैं। और अगर देवी मंदिर में जाओ, शेरावाली के मंदिर में जाओ, तो द्वारपाल के रूप में वहां पे खड़े होते हैं ध्वजा पकड़ के। तो दिस इज यू नो अ गॉड हु इज वेरी पॉपुलर, बहुत पॉपुलर है उनके सिंप्लिसिटी की वजह से। वो विद्वान है, वो बलवान है, बट इज ऑल्सो अहंकार बिल्कुल नहीं है उनमें, बहुत ही शांति से काम करते हैं। और हाँ, इस शो के बारे में अगर आप

0: आपका कोई फीडबैक है या आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो टाइप कीजिए हैशटैग देवदत्त ऑन मिर्ची DEVDUDT ऑन मिर्ची और भेज दीजिए 9033 मिर्ची पर, या आप अपना फीडबैक इस नंबर पे भी शेयर कर सकते हैं 9033647244।
1: मैं देवदत्त पटनायक मिलता रहूंगा आपसे मंडे टू संडे हर सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। थैंक यू।
2: On Radio Mirchi.
3: The Devdutt Patnaik Show.
4: The views expressed in the Devdutt Patnaik Show are the hosts alone, not the channels.

सर्वशेषिम् स्वामीं सुशील सुलभाश्रुत पारिजात श्री वेंकटेश चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमन् कृपाजल निधे कृत सर्वलोक सर्वज्ञ शक्तनत वत्सल।

0: मम्मा ने इतनी टिप्पणियां दी है ना मुझे जिंदगी में, उन बातों को मैंने अक्सर नजरअंदाज कर दिया है, लेकिन आज मैं ऑटो वाले भैया की ये जो बात थी ना उसको नजरअंदाज नहीं कर पाई।
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, Sarah, ki 90s ki yaad ka pitara, and now you tune in with me on Mirchi. और ये ऑटो वाले भैया जो होते हैं ना, इन लोगों के पास ना बड़े पिटारे होते हैं कहानियों के। और बातों ही बातों में ना एक ऑटो वाले भैया से मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने न जाने डर के बारे में बात करनी शुरू कर दी। आई मीन आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली कि ऐसा क्यों हुआ कि वो डर के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन उन्होंने डर के बारे में बात करते करते ये बात कही कि मैडम जब छोटे थे ना तो इतना डर नहीं लगा करते था, लेकिन बड़े होते होते ना डर जो है वो उम्र के साथ साथ बढ़ता गया। And I was like, हाँ यार, ये कितनी सही बात कह रहे हैं। Actually, जब हम छोटे थे तो हमें किसी चीज का डर नहीं लगता था। तब हमें लगता था कि हम दुनिया मुट्ठी में कर लेंगे। तब हमें ना अनजानों से डर लगता था, ना इस बात से डर लगता था कि कोई हमें किस नजर से देख रहा है, ना इस बात से डर लगता था कि पॉकेट मनी खत्म हो गई है, ना ही हमें ऊंचाई से डर लगता था, ना ही हमें गहराई से डर लगता था। हाँ, डर लगता था तो सिर्फ अंधेरों से, मम्मा की घूरती हुई निगाहों से, टीचर की डांट से और मेरी खुद की आर्ट से। लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए ना, ये डर जो है ये कितना बढ़ता गया ना, अब हम न जाने कितनी सारी चीजों को लेकर सिर्फ और सिर्फ डरते रहते कि नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, ये नहीं करना वरना वो हो जाएगा, वो नहीं करना वरना ये हो जाएगा। फॉर इंस्टेंस, महीने की शुरुआत होती है और हमें EMI से डर लगने लग जाता है कि ओ नो, अभी तो सैलरी आई है और अब चली जाएगी, कुछ बचेगा कि नहीं बचेगा इस महीने हमारे पास। एडवेंचर करने से भी डर लगता है मालिक, अब ऐसा लगता है कि यार गए और गिर गए तो क्या होगा। पहले ये सब बातें कौन सोचा करता था यार, हम तो सिर्फ कर जाया करते थे, सोच कर कुछ नहीं किया करते थे। मैंने कहा ना, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है ना वैसे वैसे डर भी बढ़ता जाता है। लेकिन एक मजेदारी वाली बात बताऊं, दो ही उम्र के ऐसे पड़ाव होते हैं जहां पर डर हमें कम लगता है या ना लगता है, या तो बचपन या फिर बुढ़ापा। क्योंकि जो मैंने अपने घर के बड़ों से बात करी है ना, वो भी अक्सर यही कहते हैं, अरे डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने जिंदगी देखी हुई है। तो ये जो डरने वाला माहौल बना हुआ है ना हमारी लाइफ में, वो अभी अभी है यार, आगे जाके नहीं होगा, तो ज्यादा फिक्र नहीं करने का। और अभी के लिए मेरे मोहब्बत की गाड़ी को 90s के गियर में डालती हूँ, आपसे कहती हूँ यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: अरे यू के बड़ा कोरी भाई, बजा।

0: 98.3 मिर्ची, इट्स हॉट। सारा जमाना
1: सारा का दीवाना, मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: मैं अक्सर आपसे दाल चावल फिल्मों के बारे में जिक्र करती हूँ, यानी कि वो फिल्में जो हम कितनी बार भी देख लें बोर नहीं होते हैं, और उनमें से एक आती है वेलकम।
1: मिर्ची VCR।
2: Hi, this is me, सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और क्या फिल्म बनाई थी भाई, क्या फिल्म बनाई थी, इतनी बढ़िया और इतनी जबरदस्त कि हंसते हंसते पागल हो गए थे सबके सब, तब भी और आज भी पागल हो जाते हैं। ऐसी कॉमेडी, ऐसी टाइमिंग, ऐसी कास्ट, अब तो ऐसी फिल्में बनती नहीं है यार, तभी तो वेलकम की इतनी कदर है। लेकिन बताए क्या, अगर कदर को पैसों में तोला जाए ना, तो कटरीना कैफ की एक ड्रेस थी इस फिल्म में जो उन्होंने पहनी थी, एक सिल्वर कलर की ड्रेस थी। एंड ये जो उनकी सिल्वर कलर की ड्रेस थी, ये उनकी पर्सनल वार्डरोब में से निकली हुई ड्रेस थी। इसका वर्थ था 2,00,000 रुपए का, जो उनको कभी उनके किसी फ्रेंड ने, जो फैशन डिजाइनर है एमिलियो पुची, मुझे नहीं पता, आई एम नॉट अ ब्रांड पर्सन, प्रोबेबली एमिलियो पुची इज फैशन की दुनिया में सम बिग पुची, एंड दैट इज एग्जैक्टली द रीजन की ये ड्रेस का प्राइस वॉज सो हाई। हाउ स्वीट ऑफ कटरीना कि उन्होंने इस फिल्म में इस ड्रेस का इस्तेमाल करने का सोचा भी। मैं होती तो मैं इतनी महंगी ड्रेस कभी क्यों लेकर जाती यार सेट पे। एनीवेज, मुझे तो कोई फिल्म भी ऑफर नहीं कर रहा है। मगर जब अनिल कपूर को ये फिल्म ऑफर करी गई थी, तो इट वॉज अनिल कपूर हिमसेल्फ जिसने अनीस बाजमी द डायरेक्टर ऑफ दिस फिल्म उनको ये सजेस्ट किया था कि उनके कैरेक्टर का नाम मजनू भाई होना चाहिए। आई डोंट नो हाउ डिड ही थिंक ऑफ इट, बट क्या नाम रखा यार, जबरदस्त एकदम। एंड यू नो व्हाट, एक बड़े इत्तेफाक की बात ये रही कि 1986 में अनिल कपूर ने सलमा आगा के साथ मिलकर एक पॉप एल्बम रिलीज किया था जिसमें उन्होंने गाया था यस, और उस एल्बम का नाम था वेलकम। किसने सोचा था कि इतने सालों बाद वो एक फिल्म करेंगे और उस फिल्म का नाम भी होगा वेलकम। लेकिन इस फिल्म का नाम वेलकम हमेशा नहीं था। एक्चुअली 2004 में सलमान खान ने एक इंटरव्यू में इस बात का जिक्र किया था कि वो फिरोज नादियाड वाला के साथ एक फिल्म कर रहे हैं जिसका नाम है दीवाने हुए पागल, एंड उसमें उनके ऑपोजिट कटरीना कैफ है। एंड वेल, दीवाने हुए पागल ओरिजिनल नाम था वेलकम का, जिसको लेटर ऑन टाइटल किया गया वेलकम। और इस फिल्म में सलमान खान काम करने वाले थे, लेकिन ही एग्जिटेड द फिल्म। फिर शाहिद कपूर आए, फिर इस फिल्म का नाम कर दिया गया था प्यार किए जा, और वो भी इस फिल्म से निकल गए। फाइनली अक्षय को इस फिल्म के लिए साइन किया गया और इस फिल्म का नाम रख दिया वेलकम। आई थिंक नाम में ही कोई कमी थी यार। दीवाने हुए पागल में वाकई में दीवाने हुए पागल और पिक्चर छोड़ गए, प्यार किए जा का जा पकड़ लिया और शाहिद कपूर निकल गए। जब वेलकम बोला तो कास्ट आई और फिर कभी गई नहीं। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: बड़ी फिल्मों की यही प्रॉब्लम होती है, जब किसी बड़ी फिल्म में बड़ी कास्ट होती है ना, तो आपस में इस बात के झगड़े होने लग जाते हैं कि इम्पोर्टेंस ज्यादा किसको मिलनी चाहिए। ऐसा ही कुछ वेलकम के साथ भी हुआ।
0: मिर्ची चैट रूम।
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड ऐसा कहा जाता है कि अनिल कपूर और अक्षय कुमार, इन दोनों के बीच में बड़े इश्यूज चल रहे थे जब इस फिल्म के क्रेडिट्स की बात की जा रही थी। हाँ, मतलब ये डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि भाई किसको इस फिल्म के क्रेडिट्स में सबसे पहले फीचर करना चाहिए, किसका नाम सबसे पहले आना चाहिए, अनिल कपूर का आना चाहिए या अक्षय कुमार का आना चाहिए। एंड दोनों ही अपने अपने नाम के लिए वोट कर रहे थे कि मेरा आना चाहिए, मेरा आना चाहिए, कौन सीनियर है कौन नहीं है, ये सारी जो डिसएग्रीमेंट्स थी ये सब चल रही थी। बस क्या, उसी टाइम पर इस फिल्म के डायरेक्टर अनीस बाजमी ने अपना दिमाग लगाया। ही स्टेप्ड इन एंड ही सेड, दोनों में से किसी का नहीं आएगा, बोलो पेंसिल, दोनों के नाम कैंसिल, क्रेडिट में सबसे पहला नाम आएगा फिरोज खान साहब का, बिकॉज ही इज द सीनियर मोस्ट आर्टिस्ट ऑन द सेट्स ऑफ दिस फिल्म, एज सिंपल एज दैट। लेकिन आपको पता है, जब फिरोज खान इस फिल्म के लिए शूट कर रहे थे, ही वॉज नॉट कीपिंग वेल। ये वो फिल्म थी जिसको शूट करते करते ही वॉज ऑल्सो डीलिंग विद हिज कैंसर। दुनिया को इस बारे में नहीं पता था, क्योंकि हमें तो तब पता लगा जब अचानक से एक दिन खबर आई कि फिरोज खान साहब इज नो मोर अमंगस्ट अस। एंड वेलकम वाज हिज लास्ट फिल्म दैट ही डिड। इनफैक्ट जब ये फिल्म रिलीज हुई थी, उस दिन भी फिरोज खान हैड टू बी रश टू द हॉस्पिटल। लेकिन इतनी बीमारी और इतनी तकलीफ में भी उन्होंने अपना प्रोफेशनलिज्म नहीं छोड़ा, उन्होंने अपना आर्ट नहीं छोड़ा, क्योंकि आई थिंक कहीं ना कहीं एक आर्टिस्ट को ये बात पता होती है कि ये एक चीज ऐसी है, इस आर्ट की भूख ऐसी है, जो कितना भी बड़ा कोई मर्ज क्यों ना हो, वो कैंसर ही क्यों ना हो, उसके अंदर का इंसान जिंदा रखेगी। और इसी जिंदा दिली का नाम फिरोज खान था। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Sunday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: आपको दूरदर्शन का गुमशुदा की तलाश सेगमेंट याद है?
0: मिर्ची पे टीवी दर्शन।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। डीडी वन पर रोज शाम को जब न्यूज आया करती थी तो उसमें एक सेगमेंट हुआ करता था, गुमशुदा की तलाश। याद तो हो गए यार, जो आज हमारे लिए अपने दोस्तों के लिए एक ताना बन के रह गया है कि हम अब उनके लिए कहते हैं कि तुम आते नहीं हो इसलिए हमें गुमशुदा की तलाश है। लेकिन ये कभी एक सीरियस सेगमेंट हुआ करता था जहां गुमे हुए लोग जो है उन्हें ढूंढने की कोशिश की जा रही होती थी वाया द टेलीविजन। बट एक राज की बात बताऊं मैं आपको, जब इस सेगमेंट में गुमशुदा लोगों की पिक्चर स्क्रीन पर दिखाई जाती थी ना, तो ऑनेस्टली अगर वो इंसान मेरे पास भी बैठा होता ना तो मैं भी उसे नहीं पहचान पाती। वैसे तो आज भी किसी लड़की का फोटो देखकर उसे ढूंढना मुश्किल हो जाए, क्योंकि बिना मेकअप ऑफ कोर्स किसी का चेहरा समझ नहीं आता और बिना मेकअप कोई आजकल फोटो नहीं खिंचवाता। बट एनीवेज, जोक्स अपार्ट, हम बच्चे ना इस सीरियस सेगमेंट को मजाक बना दिया करते थे। जब कोई फोटो स्क्रीन पर दिखती थी ना तो हमारा बोलना शुरू हो जाता था, एक दूसरे की टांग खींचते हुए और एक दूसरे को छेड़ते हुए, अरे देख तेरी फोटो दिखा रहे हैं टीवी पर। और पता नहीं इसमें छेड़ने वाली बात क्या थी और छिड़ने वाली बात क्या थी कि छेड़ने वाला छेड़ता था और छेड़ने वाला भी बुरी तरीके से तुनक जाता था और छिड़ जाया करता था। बट जो भी था भाई, बात ये भी कितनी सही है ना कि आज किड्स हम सीरियस चीज में भी फन ढूंढ लेते थे। एंड आई होप कि आप आज भी इस प्रथा को फॉलो करते हो, बिकॉज लाइफ को हम सीरियसली नहीं ले सकते बाबू मुशाए। क्यों? क्योंकि लाइफ इटसेल्फ इज यूज्ड टू क्रैकिंग जोक्स ऑन अस। इसी बात पर ताल से ताल मिला। कमिंग अप दिस नेक्स्ट ट्रैक, यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: हम आपके एक और एक ऐसी फिल्म है जिसको मैंने 175 बार देख लिया होगा और आज भी देयर इज अ डे जब मूड बनता है और हम एक दूसरे को कहते हैं हम आपके एक और देखे क्या।
2: ये है नब्बे की गप्पे।
1: हाय दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। देखो यार, जज करना है तो जज कर लो, मैं तो भाई हूँ सूरज भरजातिया फैन, अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ। और हम आपके कौन को इतनी बार देखने के बाद वर्ड टू वर्ड, डायलॉग टू डायलॉग और सीन टू सीन मुझे चीजें याद हैं। नाउ देयर इज अ सीन जब घर में खुशखबरी आती है, यानी कि बच्चे की किलकारी जो है वो सुनाई देती है। सब हॉस्पिटल में जो थिएटर होता है, ऑपरेशन थिएटर, उसके बाहर वेट कर रहे होते हैं कि कब बच्चे की किलकारी आए, और अधिकतना गाना वहीं से ही शुरू होता है, राइट। एंड अब डॉक्टर चाची जो है वो बाहर आती हैं और ये खबर सुनाती हैं कि लड़का हुआ है। एट दैट टाइम सलमान खान एकदम एक्साइटेड होकर हिमानी शिवपुरी को अपनी गोद में नहीं उठा लेते, दैट इज डॉक्टर चाची इन द मूवी हम आपके हैं कौन। उस वक्त दैट सीन वॉज एक्चुअली नॉट प्लान्ड, वो सलमान खान ने एकदम से कर दिया था। एंड हिमानी शिवपुरी का इस पर रिएक्शन ये था कि उन्होंने हल्के से ना सलमान खान को एक चाटा मार दिया था, बिकॉज वो चौंक गई एकदम से कि ये क्या हुआ। And she in an interview told कि you know सलमान खान was a prankster and you know ऐसी हरकतें वो कुछ ना कुछ करते ही रहते थे और ये भी एक वैसी ही सी हरकत थी। अब ये सारी चीजें जो है उस सीन में कैमरे पे कैप्चर हुई तो सूरज भरजातिया ने भी डिसाइड किया कि इस सीन को रखते हैं, हम इसमें टेक नहीं लेते हैं, बिकॉज ऑफ द रीजन कि ये अच्छा लग रहा है। एंड एक्चुअली ये कितना अच्छा लग रहा है, आई एक्चुअली लव दिस सीन जब वो डॉक्टर चाची को गोद में उठा के बच्चे की तरह खिला रहे होते हैं। आज के जमाने में है कोई माइका लाल जो ऐसा कर सकता है? ना मुन्ना ना, बड़ी मुश्किल से मिल पाते हैं। यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: आई एम नॉट टू श्योर आपने अर्जुन रामपाल और मनीषा कोइराला की मोक्ष देखी है कि नहीं, क्योंकि ये फिल्म कब आई कब गई पता ही नहीं लगा, लेकिन मैंने जरूर देखी है क्योंकि यार केबल पे जो फिल्म आती थी ना रात के 12 बजे के बाद वो मैं डेफिनेटली देखा करती थी।
2: मिर्ची थग्स ऑफ फिल्मिस्तान।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड वेल, ये फिल्म नहीं लेकिन इस फिल्म का एक गाना ऐसा है जिसकी पूरी की पूरी धुन, यानी कि जो म्यूजिक है इस पूरे पूरे गाने का, वो कट कॉपी पेस्ट है, थैंक्स टू मिस्टर राजेश रोशन जिनका म्यूजिक इस गाने में दिया गया है। द गाना इज दिस वन।

0: जो सनसनाए, क्यों जिस्म थर थर आए, कोई बताए मुझको।
1: और इसे उठाया गया है फ्रॉम एन आर्टिस्ट जिनका नाम है वैंगेलिस, और इन्होंने ये म्यूजिकल कॉम्पोजिशन बना के बस छोड़ दिया था, शायद इसी दिन के लिए कि एक दिन राजेश रोशन आए, यही म्यूजिक ऐसा का ऐसा उठाएं और इसको अपने गाने के बेड पे लगाएं और गाना चलाते जाएं।

फिलहाल के लिए डेफिनेटली नॉट दिस ट्रैक, लेकिन कमिंग अप अनदर वन आपके लिए, झूम जाओगे। स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

Ni da ni da ni da ni da ma ma ma da ni da.

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: आज का के ड्रामा का डेफिनेशन इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम 2000s का के ड्रामा।
2: आज की बात 90s के साथ।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और ऐसा नहीं है कि हम 90s किड्स के ड्रामास नहीं देखा करते थे। हम तो के ड्रामास तब से देखते आ रहे हैं जब से OTT प्लेटफॉर्म्स नहीं आए थे इन के ड्रामास को इंट्रोड्यूस करने। और हमारे लिए के ड्रामास यूज्ड टू बी एकता कपूर के सीरियल्स, जो के से ही शुरू हुआ करते थे। राइट फ्रॉम क्यों की सास भी कभी बहू थी, टू कुसुम, कहीं किसी रोज से लेकर कसौटी जिंदगी की, यू नेम इट। और हमने ये के ड्रामास देखे हुए हैं। फर्क सिर्फ इतना है तब के और अब के ड्रामास में कि तब 7 फेरे 7 दिन लेते थे, और आज के ड्रामास में शादी होगी कि नहीं ये देखने को आंखें तरस जाती हैं। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: डियर टीवी के शटर वाले कैबिनेट,
2: यादों को चिट्ठी।
1: क्या स्टार थे यार तुम ड्राइंग रूम के। हमारे घर में नहीं थे, लेकिन जिसके भी घर में मिला करते थे ना, उस घर को विजिट करते वक्त मेरा कंसंट्रेशन तुम पर ही होता था कि क्या कमाल है यार, टीवी है लेकिन इतनी खूबसूरती से छुपा हुआ। वही बात है ना कि जिस चीज में सीक्रेसी होती है ना, उस चीज को जानने की एक्साइटमेंट भी ज्यादा होती है। मुझे हमेशा लगा करता था कि ये टीवी हमारे टीवी से अलग होगा यार, लेकिन नहीं नहीं, बाद में पता लगा कि तुम वही कलर टीवी हो जो हमारे घर पर भी था, लेकिन ऐसे एक शटर वाले कैबिनेट में खूबसूरती से छुपा हुआ नहीं था हमारे घर का टीवी। तुम में रखे टीवी पर प्रोग्राम देखना ऐसा लगता था जैसे जब थिएटर में मूवी चालू होने से पहले पर्दा उठा करता था और गिरा करता था ना, वैसी सी फीलिंग आती थी अगर घर पे बैठे टीवी की स्क्रीन चालू होने से पहले तुम्हारा शटर हटाया जाता था। बड़ा ही ग्रैंड फील होता था यार। आजकल तुम्हें पता है टीवी कितने एक्सपोज्ड है, घर की दीवार पर खुलेआम टंगे रहते हैं, बेबाक और बिंदास। तुम्हारी ग्रेस की फैन, तुम्हारी सारा, जो यहाँ के अलावा इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएगी बाय द नेम मिर्ची सारा। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot. Sara zamana,
1: Sara ka deewana. Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
2: उफ, ये सवाल हम अक्सर प्यार से करते ही करते हैं। कौन सा सवाल भाई? कैसेट की साइड ए का दूसरा गाना।
3: मिर्ची 90s कैसेट।
2: सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज में दिस नशीला गाना।

बट डू यू नो इस गाने की म्यूजिक की इंस्पिरेशन एग्जॉर्सिस्ट 2 मूवी की रीगन थीम से ली गई है। बट इजंट इट कूल कि पल में डराने वाली म्यूजिक को बड़ी खूबसूरती से प्यार में गिराने वाली म्यूजिक बना दिया। और ये काम करने वाले इंसान थे द म्यूजिक कंपोजर ऑफ दिस ट्रैक संदीप चौटा। और इस गाने में ना मुझे ये लाइन बहुत ऐप लगी कि पहली दफा उसे देखकर होने लगा कुछ ऐसा असर, खुद से हुई मैं बेखबर, मैं हूँ यहाँ दिल मेरा है वहाँ। तो इसी के साथ मैं आपसे कहती हूँ हम है राही प्यार के, लेकिन फिर मिलेंगे चलते चलते। बाकी यहाँ के अलावा मैं आपको मिली जाती हूँ ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा। अपना ख्याल रखिएगा और हम फिर मिलेंगे सेम प्लेस सेम टाइम बट नॉट द सेम डे। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

Mirchi, it's hot. Radio Mirchi, it's hot. Mirchi, it's hot.

0: मिर्ची, इट्स हॉट।
1: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट। मिर्ची

98.3 मिर्ची, इट्स हॉट। मिर्ची, इट्स हॉट।

Mirchi, it's hot.

0: Mirchi, it's hot.
1: Let's go crazy.

0: Mirchi. It's hot.
1: Radio Mirchi, it's hot.
0: Mirchi, it's hot.

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: जय कन्हैया लाल की।

0: Mirchi, it's hot.
1: Man nikla.

में गाओ है रेला ऊं चपाऊं यूं पटका है ये देसी घमेला कैसा रहा यका यकी नाचो नाचो नाचो।

0: जी
1: की गल करनी है?
0: तेरे मेरे बारे
1: की?
0: बचपन तो लेके आज तक तू ही है।
1: बचपन दी बात होर सी।
0: अर 10 साल हो गए।
1: अच्छा मैं लेट हो रही हूँ, फोन ते गल करती हूँ।
0: अच्छा चल फिर फोन नंबर दे दे।

Mirchi, it's hot. Mirchi, it's hot.